0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
5: High rate, check the audio. High rate, check the audio.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आजकल मसाला।
9: India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
10: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
11: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
12: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing.
13: Welcome back, this is Reet Kaur Sahani and you're watching NDTV. Let's now take you to Punjab. Now the Punjab political temperature is now rising. Ahead of the electoral battle, the Aam Aadmi Party government in Punjab found itself in Prime Minister Modi's crosshairs. From the issue of corruption to law and order, Prime Minister Modi launched a no-holds-back barred attack, branding Aam Aadmi Party as Kattar Beiman Party. In a multi-front attack, the Prime Minister accused the Aam Aadmi Party government of pushing Punjab's youth towards drugs, claiming that drug peddlers roam freely in the state. The Prime Minister also took a swipe at the Congress Party, accusing it of being consumed by internal power struggles. The Aam Aadmi responded to the Prime Minister's attacks, with the party's national convener Arvind Kejriwal invoking the Ram Temple donation theft case and the Congress hitting back as well. Let's also listen into what the Prime Minister had to say.
14: साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना रहा है, लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। पंजाब में आज क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवार हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। दो तीन दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है। दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है।
13: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
3: दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
4: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन अक्रॉस इंडिया।

0: I feel.
1: You can serve.
2: That you are English?
1: You can start from the time.
0: No, no, look, we'll wait. We'll wait.
3: आप लाइन दे रहा हूँ, आप लाइन पर हैं।

0: हेलो
1: हेलो सर।
0: हेलो नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
2: कौन बोल
1: वी आर
0: कौन
1: पवन
0: बोल रहे
1: एंड
0: हैं?
1: भरत फ्रॉम स्काई रूट।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज टू हियर यू। फर्स्ट योर वॉइस आफ्टर द सक्सेस।
0: हेलो
1: सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस एंड आर टीम एंटायर टीम ऑफ स्काई रूट मोर देन 1000 पीपल आर हियर इन श्रीहरिकोटा एंड लिसनिंग टू यू। आर हार्ट्स आर स्वेलिंग विद प्राइड एंड दिस मीन्स अ लॉट टू अस। श्योर सर। और सर, आपका कार्ड जो आप भेजे थे, दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटर्न वंदे मातरम। सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट।
0: देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाए, और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया था लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया, और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
1: थैंक यू सर।
0: मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए निमंत्रण भी देता हूं।
1: थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. We are privileged to hear you. I'm privileged to have your blessings. Entire team of Skyroot, entire India is really, really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector. And now we see historically, you know, first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot, it's happening from India. And this is a 100% designed in India rocket, 100% manufactured in India. And I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years.
0: बनने में समर्थ है और आपने उस समर्थन को दिखाया है और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है।
1: थैंक यू सर। थैंक यू। जरूर सर। एंड इन फैक्ट हम जब 2018 में स्काईरूट स्टार्ट किया था उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देर वॉज नो फंडिंग एनवायरमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काईरूट चालू किया था। एंड नाउ वी आर वेरी प्राउड दैट द गवर्नमेंट इज एनेबल्ड एज and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone all from India with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a vision, big vision for 50 launches in 20

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम 5 विद हरीशा सहगल और फैमिली
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
0: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
3: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
3: War-struck country.
0: Hard questions.
3: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine.
5: In France. In Italy.
3: At Srinagar.
5: France.
3: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
6: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको ये हॉस्पिटल की लापरवाही है
7: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स
8: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान
9: checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
1: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: to peacefully vacate the protest site. Activist Sonam Wangchuk has been taken away from his protest site and shifted to a hospital, drawing sharp political reactions. Congress says that the hospital shift was expected but questioned why the center did not engage in dialogue, adding that the forced removal suggests the government is under pressure and could further fuel the public outrage. Samajwadi Party MP Dimple Yadav termed Wangchuk's removal as an attack on democracy.
1: बहुत गलत नीति है कि जो व्यक्ति इतने दिनों से लगभग 20 दिन से सोनम वांगचुक जी अन्न को त्यागे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे थे, किस मुद्दे को लेकर कर रहे थे, नौजवानों के भविष्य को लेकर और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते थे, सरकार ने कोई संवाद नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी, कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जब पूरे देश का प्रभाव पड़ रहा है और दबाव बन रहा था तो अब उनको जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले जाया गया है सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि सरकार की जवाबदेही तय ना हो। बेहतर ही होता सरकार संवाद करती और जो उनकी मांग थी उस मांग को पूरा करती। इस तरह जबरदस्ती उनको उठाकर अस्पताल ले जाना कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार बहुत दबाव में है।
2: अगर कोई व्यक्ति 19वें दिन अगर बीमार है तो 20वें दिन भी उतना ही बीमार होगा। अफसोस ये है कि सरकार इनके सामने डर गई है और 20 तारीख का आह्वान जो पूरे देश में सोनम वांगचुक और अखिल जनता पार्टी के फेवर में, या हम ये कहें कि इस देश की युवाओं के फेवर में है, या हम ये कहें कि इस देश के जनजी के जो फेवर में है, उससे सरकार थर थर कांप रही है। इसलिए आज सोनम वांगचुक जी को धरना स्थल से उठा के ले गई है। वो कहीं नहीं चाहती हैं कि भारत सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आक्रोश पूरे सड़कों पर आए। लेकिन आप गलती कर रहे हैं सरकार, आप युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, आप बेरोजगारियों की बात नहीं सुन रहे हैं। आज ये सिर्फ आपने धरना रोका है लेकिन इस देश के युवाओं में जो दिल धड़क रहा है वो आपके खिलाफ हो चुका है और आपके खिलाफ आपको सत्ता से हटा के रहेगा।
0: बेंगलुरु's second international airport has now become the latest political flashpoint in Karnataka. Congress government's reported consideration of Kanakapura as the possible location has sparked a political face-off. Karnataka BJP President B.Y. Vijayendra has written an open letter to Chief Minister D.K. Sivakumar questioning the choice of Kanakapura, which happens to be Chief Minister's constituency. Pitching Tumakuru as an alternative, Vijayendra said that the airport's location should prioritize balanced regional growth over political consideration. He has warned that the airport should not be seen as a project benefiting only one constituency, but as a project that drives the growth of the entire state. All right, we'll keep a track of that story and much more, but for now, we're slipping into a very short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: क्या आपको जरा भी शर्म
1: हाँ
0: नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
0: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
1: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर। वीडियो
1: फोन कान से हटाया, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो।
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
0: आपको आपको किसने
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: कभी नहीं किसी पे भी हाथ
1: उठा? हमारा हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
0: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर, डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
0: वैभव पे आपने हाथ उठाया होगा,
1: लेकिन
0: गुंडे आपके पास
1: फोन के ऊपर, फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
0: और उसका अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी
0: ये
1: वो।
0: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं,
1: नहीं
0: बोल सकते हैं। आप झूठ नहीं बोल
1: गले
0: सकते।
1: पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
0: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
0: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो।
0: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
1: हमारे भी
0: आपको
1: वहां एक,
0: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी नागरिक, हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
0: सर ये वीडियो तो देखिए,
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
0: सर? आप
1: अगर हमको
0: काम करते हैं,
1: बात करने
0: आपका काम है सर,
1: हम आते ही नहीं। अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर।
0: तो आपके पास कोई अफसोस नहीं?
1: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो हम
0: आखिरी सवाल,
1: जरूरत ही नहीं पड़ता था।
0: अफसोस बिल्कुल नहीं है, ये हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है? क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है।
1: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
0: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडर द लॉ देन वायलेंस हैज बीन यूज्ड।
1: नहीं फर्क पड़ता है, मेरी बात तो सुनो। वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
0: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो।
1: अभी मारूंगा,
0: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
1: मैंने किया है,
0: आप कुछ
1: एक दो जान बचे
0: हैं,
1: हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए हैं, हम SSC पास है
0: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
1: हमारे
0: पास एक नैरेटिव मिल गया है निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको,
1: और उसके माँ की जान बच गई है।
0: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे NDTV? आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
1: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ता थे
0: वो जो गुंडे हैं। ये विजुअल देखिए NDTV पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर। वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर,
1: तो सर आंखों में आंसू
0: जो टीवी
1: और
0: पर
1: वो जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
0: क्या आगे जाके
1: आदमी नहीं
0: करेंगे आप? आगे तो जाके
1: जान बचाने का काम उसका नहीं था?
0: ये सब छोड़िए,
1: हमारे CMO ने
0: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो। अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आपको गुंडा आ जाएगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।
12: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani,

0: हुआ जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
5: अरे मेरे राजा।
6: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
7: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
8: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
9: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
10: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
5: उसकी बिल्डिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मित्तु को सीधी कर

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now 4

0: and said, no, we do not want political appointees in temples. That is what pretty much went wrong in Ayodhya as well. You had political appointees who then outsourced their work. There was no proper oversight. And we saw what happened. 24.2% can't say. Who should audit temple donations? A government auditor, say 38.7% of the people. There should be a proper investigation, regular audit. This is people's hard-earned money. It's a matter of trust. And we should have, if not through a political appointee, through regular government audits, the CAG perhaps, should take up regular audits of what is happening to the temple funds. 19% say private auditor, and the second highest number is for a devotee committee. 21.4% say a committee made up of devotees, but even that becomes very subjective. Who is going to be appointed to this committee? Who will take the final call on that? Maximum number of people seem to be going with a government auditor. Should temple finances be made public under RTI? Should there be complete transparency? And I think everyone here has been unequivocal. 67%, more than two-thirds of the people say, yes, temple's finances should be made public. If I have donated, I want to know under RTI whether that money, whether those valuables are safe. Are they being constantly monitored? What's being done with them? Are they safe? 67% say yes, only 8% say no. And finally, final two questions. Is Ram Mandir CEO model shift the right move? This is the big reform that has now been brought in. And a large number of people say yes, 37% still not sure. Perhaps they are waiting to see how this is implemented, if this is the foolproof mechanism, if this is the right way ahead. But most people seem to think that this reform is in order and it is the right direction to take. And finally, do you trust the government appointed SIT probes on temple boards in what should come as a relief for the government? 41% say yes, we do trust the government appointed SIT probe on temple boards. Only 33% are saying no. 25% remain undecided. So is this going to be a tricky issue for the government to negotiate when the parliament session starts? Let's do a impartial analysis of this. Joining us now is senior journalist Sameer Chaugankar. Also with us is managing editor of NDTV, Akhilesh Sharma. Because stepping aside of the political wrangling, I'll start with you, Sameer ji. आपको लगता है कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है?
1: नहीं पद्मजा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सेशन शुरू होने के पहले जो मामला पूरा हुआ था राम मंदिर को लेकर, अगर आप विपक्ष का रुख देखेंगे तो अखिलेश यादव के अलावा किसी ने भी इससे बहुत मामले को उठाने की कोशिश नहीं की है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पवन खेड़ा ने इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे कोई बड़ा एक इशू बनाने की कोशिश नहीं की। अखिलेश यादव जरूर इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते रहे। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा और सरकार को कोई बहुत परेशानी विपक्ष इस मामले को लेकर करेगा। हालांकि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, संसदीय दल की बैठक, उसमें इस बात पर जरूर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि कई अन्य विषय भी रहेगा जिस पर सरकार बात करेगी। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा करें, एथेनॉल का जो 20% का जो मिक्स है उसको लेकर चर्चा की जाए, और बाकी जो भूपेन यादव के जो अधिकारी थे जिनको हटा दिया गया था उसको लेकर चर्चा करें। राम मंदिर पर चर्चा जरूर विपक्ष करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर एग्रेसिव भूमिका अख्तियार की थी लगातार, तो मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन विपक्ष इस पार्लियामेंट सेशन को चलने नहीं देगा तो उसे ये मुद्दा भी एक हाथ में लगा हुआ है जिस पर वो जरूर करेगा। सरकार इस पर बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष कहता है कि वो मामले में सदन को चलने नहीं देगा। विपक्ष के पास बहुत और मुद्दे भी है, लेकिन यह मुद्दा विपक्ष मुझे लगता है कि अपने हाथ से गवा चुका है।
0: आप कह रहे हैं गवा चुका है, बट एटलीस्ट देयर इज सम वन इशू, दिस इज वन इशू अखिलेश जी, वेयर एवरीवन सीम्स टू बी ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन, वेदर इट बी द समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस पार्टी। व्हाट इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू टेक दिस ऑन इनसाइड पार्लियामेंट व्हेन इट इज ब्रॉट अप?
2: Well, Padmaja, I think what the opposition is demanding is the accountability. They want that somebody should take responsibility, whatever has happened, and the accountability should be fixed and the culprit should be punished. This is what the opposition's demand is. And what I think that Samajwadi Party especially will be very aggressive on this issue because

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
9: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
10: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
11: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
12: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
13: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आग और मसाला।
15: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
16: दिस इज द
17: शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
18: ये जो वीडियो जो सामने आया है, जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
19: हमको हक हमारे पार्टी के बालदेव ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो वहाँ आप अपना तरीका दिखा सकते हो।
20: Nearly 2 weeks after the shocking assault on doctors that outraged Maharashtra and the rest of the country, Shinde Sena's thug corporator Ramesh Mhatre has quietly disappeared from the public eye and possibly gone on a week-long vacation.
21: The High Court has cancelled the bail granted to Mhatre and ordered him to surrender before the police, latest by 5 p.m. tomorrow. The NDTV Impact, we've carried this story.
18: The cancellation of this thug operator's bail comes just about 19 hours after my show last night. Bombay High Court are clearly taking cognizance of all of the things that NDTV has highlighted over the last many days. That, coupled with NDTV's relentless coverage and everything that we revealed, became too much to bear, and that's the reason why the Bombay High Court had to step in.

0: हुआ जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: उसकी बुलेट रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV covered.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
5: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
6: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
7: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
8: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.

0: होगा जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: fan of the party and we will continue to do so.
1: An activist, Sonam Wangchuk, has been taken away from the protest site, shifted to a hospital, drawing sharp political reactions. Congress say that the hospital shift was expected, but they questioned why Centre did not engage in dialogue, adding that the forced removal suggests that the government is under pressure and this could further fuel public outrage. Samajwadi Party MP Dimple Yadav termed Wangchuk's removal as an attack on democracy.
2: ये मैं समझता हूँ सरकार की बहुत गलत नीति है कि जो व्यक्ति इतने दिनों से लगभग 20 दिन से सोनम वांगचुक जी अन्न को त्यागे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे थे, किस मुद्दे को लेकर कर रहे थे, नौजवानों के भविष्य को लेकर और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते थे, सरकार ने कोई संवाद नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी, कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जब पूरे देश का प्रभाव पड़ रहा है और दबाव बन रहा था तो अब उनको जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले जाया गया है सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि सरकार की जवाबदेही तय ना हो। बेहतर ही होता सरकार संवाद करती और जो उनकी मांग थी उस मांग को पूरा करती। इस तरह जबरदस्ती उनको उठाकर अस्पताल ले जाना कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार बहुत दबाव में है।
3: अगर कोई व्यक्ति 19वें दिन अगर बीमार है तो 20वें दिन भी उतना ही बीमार होगा। अफसोस ये है कि सरकार इनके सामने डर गई है और 20 तारीख का आह्वान जो पूरे देश में सोनम वांगचुक और आक्रोश जनता पार्टी के फेवर में, या हम ये कहें कि इस देश की युवाओं के फेवर में है, या हम ये कहें कि इस देश के जनजी के जो फेवर में है, उससे सरकार थर थर कांप रही है। इसलिए आज सोनम वांगचुक जी को धरना स्थल से उठा के ले गई है। वो कहीं नहीं चाहती हैं कि भारत सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आक्रोश पूरे सड़कों पर आए। लेकिन आप गलती कर रहे हैं सरकार, आप युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, आप बेरोजगारियों की बात नहीं सुन रहे हैं। आज ये सिर्फ आपने धरना रोका है लेकिन इस देश के युवाओं में जो दिल धड़क रहा है वो अब आपके खिलाफ हो चुका है और आपके खिलाफ आपको सत्ता से हटा के रहेगा।
1: India's space story has entered a new era. For the first time ever, a privately built Indian rocket has successfully reached the orbit. Hyderabad-based Skyroot Aerospace Vikram 1 has scripted history with Mission Agman, signalling the arrival of India's private space industry on the global stage. The mission not only marks a breakthrough for one company, but also a major milestone in India's expanding commercial space ambitions.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: And we have liftoff of Vikram 1.
6: At 12:05 and 30 p.m., Vikram 1 thundered off the first launch pad at Sriharikota, becoming the first privately developed Indian rocket to attempt an orbital mission. A launch years in the making and one that instantly entered the history books. Mission Agaman marks more than just a successful launch. It announces India's arrival in the global private launch market. With this mission, Hyderabad-based Skyroot Aerospace joins a select group of private companies worldwide capable of designing, building and launching orbital rockets. There was anxiety and anticipation during a brief planned hold just minutes before the scheduled 11:30 a.m. launch.
7: We have received the information that this is a planned hold and we have been advised to stay on standby.
8: Minus 15 seconds.
6: The countdown resumed and soon the anxiety gave way to jubilation. Standing nearly 7 stories tall, Vikram 1 is an all-carbon composite multi-stage launch vehicle. It is powered by propulsion systems developed entirely in-house, including a 3D printed engine and high-thrust solid rocket motors. Designed to carry satellites weighing up to 350 kilograms into low Earth orbit, the maiden mission targeted a 450 kilometer orbit. The rocket also carried Cosmic Bloom, an artwork by Cosmos, diamonds along with microscopic sculptures honoring three icons of Indian science, Sir C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai and Dr. A.P.J. Abdul Kalam. It also carried signatures of the engineers and technicians who built the rocket, along with a simple handwritten message from Prime Minister Modi, Vande Mataram.
5: Both satellites have been deployed successfully and we have reached space on our first attempt successfully.
6: At 12:21 p.m., Mission Control confirmed payload injection into the intended orbit.

नीति है कि जो व्यक्ति इतने दिनों से लगभग 20 दिन से सोनम वांगचुक जी अन्न को त्यागे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे थे, किस मुद्दे को लेकर कर रहे थे, नौजवानों के

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now